0: Anybody else?
1: डॉक्टर मोहम्मद का दर्द करने कुछ है
0: रीड क्लोज वेर ऑफ विनस रीड फ्रॉम क्लोज वेर ऑफ विनस
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

शामिल हुए। सैकड़ों गम से मिली उनको नजात, जो तुम्हारे दर्द के हाथ

सभी कुछ है मगर जब वो नहीं कुछ भी नहीं हासिल. पर्सन कैन हैव वेल्थ, ही कैन हैव प्रॉपर्टीज, ही कैन हैव एसेट्स, ही कैन हैव हेल्थ, ही कैन हैव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड गोइंग फॉर हिम. बट यू नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम मोहब्बत, नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम लव इज नॉट इन हिज लाइफ, नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम इश्क इज नॉट इन हिज लाइफ, नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम इताअत इज नॉट इन हिज लाइफ, देन नथिंग इज इन हिज लाइफ. He hasn't attained anything. And the other meaning, that if the person has seen everything in the world, but he hasn't seen the Rosa Mubarak of Nabi alayhi salatu wasalam, then he hasn't seen anything. So many people, America, China, Japan, France, England, everywhere they go, up and down, and you ask the person, did you go to Makkah Sharif, Madina Sharif, have you made Hajj? He said, no. Have you made any Umrah? No. So then the person hasn't seen anything. He can see the world, tourist attractions. But if he hasn't seen Rasul-e-Pak, Sallallahu Alaihi Wasallam's Rauza Mubarak, then he hasn't seen anything.